सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली देंगे ये सलामी चलने को जगह

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

अगर किसी ने बीड़ा उठाया है मेरी गुड मॉर्निंग को और ज्यादा मॉर्निंग अच्छी बनाने का, बिंदास बनाने का, तो वो यही गाना है। देखो अब देखो यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें करनी नहीं होती है लेकिन हमें करनी पड़ती है। जैसे सुबह सुबह उठने की बात कोई आप ले लो, मन नहीं होता है लेकिन करना तो पड़ता है। So, say good morning and welcome 106.3 Radio Oliver. मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गए हैं, जहाँ पर आपकी मॉर्निंग्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बिंदास बनाएंगे हम, थोड़ा और यू नो फन करेंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे एंड आपकी मॉर्निंग वाली लेजीनेस को टाटा बाय बाय कर देंगे। सो अगर आप ऑलरेडी अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या फिर यू नो कहीं के लिए भी निकल चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने शुरुआत जो है वो तो अच्छी कर दी है। अब देखो बाकी दिन जो है वो कैसा जाएगा, क्या प्लानिंग अभी तक करी हुई है, क्या कुछ जो है एजेंडा है दिन का, वो आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन गानों को एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। फिलहाल दिलजीत दुसांज की आवाज में मैं वापस आऊंगा से, क्या कमाल है।

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ऑलिव नंबर वन
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: बस जो इन्होंने कहा है ना वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप धड़कन में दिल, आप चाय में टोस्ट, बात ही की है देखो। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिशन, आपकी मॉर्निंग्स को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा बिंदास बनाने के लिए बिंदास मॉर्निंग शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और देखिए बहुत सारे लोगों ने हमें गुड मॉर्निंग कहा है, तो आइए देख लेते हैं। अबरार जी ने एक बहुत ही प्यारी सी, अमेजिंग सी जो है गुड मॉर्निंग वाली एक इमेज भेजी है जिसमें ब्लू कलर की चाय है। वाओ, हाउ हेल्दी एंड हाउ फैंसी। ओके, उसके बाद संधू जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग जी, आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक एंड प्रोडक्टिव डे, हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, थैंक यू सो मच जियो बिंदास। एंड असमा जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, एवरी न्यू मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू शाइन, टेक इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर डे, थैंक यू सो मच असमा जी। बस देखिए आप लोग ये जो मोटिवेशन हमें दे देते हैं ना, बस इसी मोटिवेशन की तो हमें ज़रूरत होती है, और क्या चाहिए इतने सुबह सुबह ऑफिस आने के लिए ना। वैसे तो ये बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातें जो है वो हम करने वाले हैं, हर रोज़ लाइफ मस्त है, पर हमारी मुलाकात होती है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मॉर्निंग्स को बिंदास बनाया जाए, बस इसीलिए लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिंदास मॉर्निंग। अब देखिए कि हम जो है आपसे एक अमेजिंग वाला, यानी थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा आसान वाला सवाल पूछे, उससे पहले आपको एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुना देते हैं। तो जल्दी से ये गाना जो है इसे एंजॉय करके आइए, उसके बाद आपसे पूछेंगे ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: जिंदगी मेरी डांस डांस, ये तो मेरी बात हो रही है। ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

देखिए मोहब्बत तो आप लोगों से हो गई थी जब मैंने बिंदास मॉर्निंग करना शुरू किया था. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश. आपकी मॉर्निंग्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बिंदास बनाने के लिए बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई हूँ. एंड इतने सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि मेरी नींद जो है वो खुल गई है. अभी तक मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, ठीक है, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब फाइनली अच्छा अच्छा सा लग रहा है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल पूछा जाए. तो बच्चा पार्टी एंड बच्चा पार्टी की मम्मी पापा, क्या आप लोग रेडी हैं एक सिंपल से सवाल का जवाब देने के लिए? सो आज का सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे कतर से रिलेटेड है. और अगर आपने कतर के बारे में थोड़ा भी जाना है, पहचाना है, तो आपको ये पता जरूर होगा. सो बस आपको मुझे जो है मैसेज करना है 3311063 पर, और ये बताना है कि कतर के साथ ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है. बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके. मैं जो है जरा आपको गाने वाने सुनाती हूँ और थोड़ी सी ना चाय बना कर आती हूँ. चाय बनेगी तभी तो पीऊंगी ना थोड़ी देर में. कैसी बातें करते हैं आप. फिलहाल ये अमेजिंग गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए. और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today. Video on.

0: on Old Gold Exchange and much more only at Joy Anukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewellery purchased from Joy Anukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Anukas, world's favourite jeweller.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: मैं तो आप लोगों को कहीं भी नहीं जाने दूंगी।
1: तो देखिए आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो बिंदास मॉर्निंग चल रहा है। एंड चलिए मौसम के बारे में थोड़ी बातचीत जो है वो कर लेते हैं। मौसम कैसा रहने वाला है आज उसकी बात कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या कुछ रहने वाला है उस पर भी बात कर लेते हैं। सो दोहा में इस वक्त करंट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हाँ मतलब जिस हिसाब से अभी कुछ दिनों से टेम्परेचर चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत ही कम है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। एंड देखिए ह्यूमिडिटी होने वाली है, सो ह्यूमिडिटी से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। पानी ही अभी आपका सबसे बड़ा यू नो सपोर्ट सिस्टम है, तो हाइड्रेटेड रहिए, अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखिए। एंड सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मेरे साथ लाइफ मस्त शो एंजॉय करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि सनस्क्रीन को लेके कितनी ऑब्सेस्ड हूं मैं। सो फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। सनस्क्रीन लगाते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा। बाकी एक बहुत ही अमेजिंग वाली खबर जो है मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। ये मैंने कौन सी एक्ट्रेस की यू नो एक्टिंग करने की कोशिश की है ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो अदरक वाली चाय पीती हूँ। मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
3: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: कितने लोग हैं जो दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन दूल्हे राजा तो आ ही नहीं पा रहे हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो और इस पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपकी मॉर्निंग्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बिंदास बनाने के लिए शो बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड मैंने आप लोगों को मौसम के बारे में बता दिया था लेकिन आप लोगों से ये कहना भूल गई थी कि यार आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ की फोटोज खींच के भेजिए यार, मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर इस वक्त कैसा माहौल हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है। सो मैं तब भूल गई थी लेकिन अब मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जल्दी जल्दी से फोटोज खींचिए और मुझे भेज दीजिए 3311063 पर। फिलहाल जो कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे पास वो पढ़ लेते हैं। सो सामी जी ने जो है वो लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामी जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपको सुन के अच्छा लगा। सुदेव भाई नहीं है आज? नहीं जी, सुदेव भाई जो है अब आपको एक अलग टाइम पर सुनाई देंगे एंड मैं भी अपने शो लाइफ मस्त है मैं आपको सुनाई दूंगी 10 से 1। अब मॉर्निंग जो है आपकी बिंदास कौन सा आरजे बनाएगा ये सुनने के लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। सो बस आपको जो है सुनते रहना है रेडियो ऑलिव ताकि आपको पता चले कि अब कल से आपकी मॉर्निंग्स को बिंदास कौन बना रहा है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि आपके बोगनविलिया की फोटोज को मैंने बहुत मिस किया, बहुत बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। सो अगर एक स्पेशल फोटो मेरे लिए हो जाती सामी जी तो मज़ा आ जाता। तो प्लीज़ एक बार भेज दीजिए मुझे फोटो। और फिलहाल थोड़ी देर पहले मैंने जो है एक बहुत ही स्टूपिड सी एक्टिंग करने की कोशिश की थी अधक हो गया है आदमी कहीं से भी बढ़ रहा है। सो मैंने पूछा था कि कौन सी एक्ट्रेस लग रही है आपको। सो आप लोगों ने पहचान लिया है मुझे, अरहम जी ने कहा है कंगना रनौत की एक्टिंग कर रहे हो आप और हंसे भी हैं वो मेरे पे, तो मुझे समझ आ गया कि ठीक है चलो उतनी बुरी एक्टिंग नहीं थी। आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ गया कि कौन सी एक्ट्रेस की बात हो रही है। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। और बाकी थोड़ी सी देर में किस किस ने मुझे फोटोज भेजी हैं कहाँ कहाँ की, कैसा मौसम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से जहाँ भी हैं आप, अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो 3311063 पर जल्दी से मुझे जो है फोटोज भेज दीजिए क्योंकि यहाँ स्टूडियो में एक खिड़की भी नहीं है यार, बाहर का माहौल मौसम पता ही नहीं चलता है। सो जबरदस्त हिट सुनते हुए जबरदस्ती फोटो आ जानी चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे 3311063 पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो,
3: देखो तो क्या ही बात
0: है। मिस्ड मैच सीजन 3 का ये ट्रैक आर आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए। और मिस्ड मैच सीजन 4 जो है वो भी आने वाला है जी। अब बिंदास

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

मूवी का नाम देखिए खुशी है और आप मेरी खुशी है, इसीलिए इस गाने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना जरूरी है। गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई जो यहाँ पे आपकी बेसिक्स मॉर्निंग को थोड़ा सा यू नो बिंदास बनाने का यू नो बीड़ा उठाया है मैंने। मैंने कोशिश की है कि आपकी यू नो बेसिक वाली मॉर्निंग को थोड़ा बिंदास बना दूँ। एंड मैं ना ये बहुत प्राउडली कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी है जितनी आप लोग कर देते हो। मतलब इतना प्यार, मैं तो मतलब मेरी आंखों से सच में आंसू आ गए थे। सो सामी जी थैंक यू सो मच। सामी जी से मैंने कहा था कि यार सामी जी आप जब मैं सुदेव के साथ मिलकर मॉर्निंग शो किया करती थी बिंदास मॉर्निंग सो तब आप बोगनविलिया की फोटोज भेजा करते थे एंड तब वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने तो वॉलपेपर भी लगाया रखा था। लेकिन आज क्या आप सिर्फ मेरे लिए बोगनविलिया की फोटोज भेज सकते हैं? तो सामी जी ने जो है फोटो भेजी है एंड 2-3 फोटो भेजी है और उन्होंने लिखा भी है कि आई होप आपको ये जो फोटोज हैं ये अच्छी लगे। क्यों अच्छी नहीं लगेगी जब इतने प्यार से आपने क्लिक करके जो है भेजी है। ऑफ कोर्स आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट। एंड इसी के साथ साथ अस्मा जी ने भी मुझे बोगनविलिया की फोटोज भेजी है। थैंक यू सो मच अस्मा जी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड जब मैंने सबसे कहा नहीं था ना कि मुझे मैसेज करो, उससे पहले अस्मा जी का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज मेरे पास आ गया था। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अस्मा जी ने ये भी लिखा है कि धूप दिखाने की कोशिश की है फोटो में लेकिन दिखी नहीं। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी देर आप और रुकिए, फिर सिर्फ धूप धूप दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। फिलहाल देखिए मैं यहाँ से चलती हूँ, एक गाना आपके लिए जो है वो मैं प्ले कर रही हूँ, अपनी चाय लेकर आती हूँ मैं एंड उसके बाद हम चाय पर ही चर्चा करने वाले, यानी चाय के बारे में एक अमेजिंग वाला फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी, हेल्थ के बारे में बात करेंगे चाय को लेकर। सो फिलहाल 4 बजे गाना जो है मैं आपको सुना रही हूँ, 7:30 बजे 7:30 हो रहा है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में। ये गाना एंजॉय करो और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Life 24. 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

चाय को लेकर ना मेरी एक थ्योरी है कि अगर मेरे दादाजी को अगर मैंने चाय दी है और उन्होंने चाय पीते हुए सुर वाली आवाज नहीं करी, मतलब उन्हें चाय उतनी ज्यादा ना पसंद नहीं आई. क्या आपका भी ऐसा ही है? वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं बिंदास मॉर्निंग, जहां पे आपकी बेसिक मॉर्निंग को हम बनाएंगे बिंदास. अब देखिए यार, चाय की बात हम कर रहे थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक ऐसी चीज आपको बताऊंगी कि यार ये जो चाय है इससे हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है. चाय स्पेशली हमारी अदरक और इलायची वाली जो चाय है या ब्लैक टी है, वो हमारी बॉडी पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो डालती है. अगर इसे लिमिटेड क्वांटिटी में पिया जाए तो चाय हमारी बॉडी के बहुत सारे फायदों के लिए जो है मतलब अच्छी हो सकती है. सबसे पहले तो एनर्जी और फोकस बढ़ाती है, एनर्जी बूस्ट करती है. कैफीन जो कॉन्टेंट है वो आपके लिए अच्छा होता है, आपको ड्राउजीनेस यानी जो स्लीपीनेस लेजीनेस होता है उससे दूर रखता है. आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है. स्पाइसेस अगर आप जो है अपनी चाय में डालते हैं जैसे दालचीनी, जिंजर, तुलसी या लौंग, ये सब जो है आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं. तो किसी सूप से जितना आपको यू नो फायदा मिलता है उतना ही चाय से भी मिलता है. डाइजेशन जो है वो भी अच्छा करती है. सो चाय इन अ सेंस अच्छी है. एंड बहुत सारे अलग अलग फैक्ट जो है वो कहे जाते हैं. सो अगर आप चाय को ताज़ा पीते हो, ताज़ा मतलब ऐसा ताज़ा नहीं बोल रही हूँ मैं ताज़ा पीते मतलब चाय को बना के तभी पीते हो, उसे रखते नहीं है ज़्यादा देर के लिए, तो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी वो काम करती है. सो स्ट्रेस कम करना हो या फिर अपने दिल को बस सुकून ठंडक पहुंचाना हो, आपको जो है बस चाय इंजॉय करना है. सो आप जो है चाय पीजिए. मैं तो चाय पी ही रही हूँ. बाकी एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए. उसके बाद ऑल अपडेट्स लेकर आ रही हूँ मैं. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: Wow.
1: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव
3: हेलो नमस्कार मम्मा मिया मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: सचेत टंडन की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त बोलने वाली थी लेकिन बिंदास मॉर्निंग लाई हूँ। आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा उठाया है अपनी नाजुक कंधों पर। अब देखिए यार, मैं एक क्रिकेट पगलू हूँ और इस बात से जो है अब कोई भी महरूम नहीं है। सबको पता है कि कशिश को क्रिकेट कितना पसंद है, लेकिन अभी जो कतर में फीफा फीवर चल रहा है, अगर इस पर बात करें तो देखो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ज़रूरी है फीफा पर बात करना, बिकॉज सब बात करें। मैं अपने कुछ बहुत ही अजीज दोस्तों को जब भी वीडियो कॉल लगाती हूँ इंडिया में, तो वो हर वक्त सो रहे होते हैं बिकॉज रात रात भर जग कर मिस ये जो है क्या मैं बोलूँगी, इतने ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं फुटबॉल के कि पूरे टाइम बस बैठकर मैचेस देखते रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2026 फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स को जो ऑफिशियली सेट हो चुके हैं, जहाँ इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम के थ्रिलर्स जीत कर जो है एक आखिरी दो स्पॉट जो है वो अपने नाम कर लिए हैं। और अब आपका जो पूरा शेड्यूल है मैच का वो बिल्कुल रेडी है। सो फ्रांस वर्सेज स्पेन ट्यूजडे यानी जुलाई 14 को एंड इंग्लैंड वर्सेज अर्जेंटीना वेंसडे जुलाई 15 को होने वाला है। और ये जो है अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो मेरे दोस्तों से जो रात रात भर जग कर मैचेस देखते हैं उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ले ली, क्योंकि मुझे फीफा का एफ भी नहीं आता है। सो कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, कोई फैक्ट हो, कोई ट्रिविया हो, तो जरूर से बताइएगा 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। और नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना मैं आपको सुना रही हूँ, तो ये इंजॉय करके आओ, उसके बाद फिर थोड़ी और इम्पोर्टेंट फीफा के बारे में ही बात कर लेंगे।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

देखो मैं तो शरारा हूँ ही, लेकिन आशा भोसले जी की आवाज में मेरी यार की शादी है मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा जो है वो मैंने अपने नाजुक कंधों पे उठाया है एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए यार, स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 8:29, संडे का आज दिन है। अगर मैं अभी इंडिया में हो रही होती तो अभी तक मैं सो रही होती, और अभी तक क्या, मैं 11-12 बजे तक सो रही होती। लेकिन जब आप जो है अपने घर से इतने दूर हो और आपके फैमिली ग्रुप पे अचानक से आपकी फैमिली के चिल करने का वीडियो आपके सामने आता है, आपको ऐसा लगता है कि क्यों इतने इंडिपेंडेंट हो रहा था। पर कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ मैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। खैर, फीफा की बात कर रहे थे हम, सो फीफा के बारे में मैं आपको दो ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिनको जानने के बाद आपका दिमाग जो है उसका दही हो जाएगा, और दिमाग का दही होने के बाद दिमाग का रायता भी हो सकता है। सो जरा संभल के सुनिएगा। सो आपको ऐसा लगता है कि आपको फुटबॉल के बारे में सब कुछ पता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, सो 1930 का जो वर्ल्ड कप था, फिनाले था, उसको दो बॉल से खेला गया था। हाँ जी, दो फुटबॉल से खेला गया था, क्योंकि जो दोनों टीम्स थी वो एक बॉल पे मान ही नहीं रही थी, बोल रही थी नहीं हम तो नहीं खेलेंगे, इसलिए दो दो बॉल्स जो हैं वो यूज़ करी। 1966 में जो ट्रॉफी थी उसे जो है चुरा लिया गया था, एंड उसके बाद वो मिली बहुत मुश्किल से थी, और उसे ढूंढा था एक पेट ने। अब देखिए, सबसे क्रेजी पार्ट तो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि 1970 से पहले येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स जो हैं वो होते ही नहीं थे। सोचो कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि अभी तो रेड और येलो कार्ड से भी प्लेयर्स जो हैं वो संभलते नहीं हैं। खैर देखो, मुझे जो है फुटबॉल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो 3311063 पर अपने फुटबॉल फैक्ट्स जो है वो आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर एक्शन रीप्ले मूवी से, और अगर ये मूवी आपने नहीं देखी है तो यार जाकर देखो एक बार, आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी ये मूवी, एक बार आपको ज़रूर से देख लेनी चाहिए, क्योंकि फुल ब्रेन रॉट है, और उस टाइम पे ये बनाया गया था जब ब्रेन रॉट एक चीज़ थी भी नहीं। अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय एंड द लवली द अमेजिंग करली बाल वाले आदित्य रॉय कपूर, ओ माई गॉड। सो ओ बेखबर गाना है, बहुत ही प्रीटी सा ब्यूटीफुल सा गाना है, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, आप इन्जॉय करके आइए। उसके बाद थोड़ी और बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।